ऐतिहासिक राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत गुरुवार भोली केन्द्रीय सदस्य पद पर लागू मतदान होने पर पूछा।

नमस्कार, रेडियो ढोरबार 103.8 मेगाहर्ज को बिहान 5:25 बजे को ढोरबार हाइलाइट्स में समाचार कक्षबाट लक्ष्मी सुनार को स्वागत छ। ढोरबार हाइलाइट्स शुरू गरौ आज का मुख्य समाचार का शीर्षकहरुबाट।